0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो
1: पीना लाई ची सो उठाओ हॉले
2: हॉले गर्मी मनाया फ्रेश
1: रिफ्रेशमेंट बार न्यूट्रिशन मीट
2: ची सो हॉले।

सुन कर दो, बस सुन कर दो। खाली पन ते सोना सोनापन है, बड़ी बेचैनी ते कल्लापन है। तन रूह कांप रही, मौत कही आलाप रही। कल्ला सुखदा सा रुकदा, प्राण मेरे खिचदा खिचदा। किते गेम खत्म ना हो जावे, मैं खुद सही अब लुकदा छिपता। हाँ

साहिब एलआई मोटर्स विस्तृत जानकारी को लागी एलआई मोटर्स बुद्ध चौक पोखरा फोन नंबर 061-527-426 537-526

0: বাটসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপলাইন 01-597-06-11
1: ओहो नासर बे कति छाबा डिजाइन बे मारेखाना खिनानी खनि तोला
2: खनाई बिवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाटी दुकान महेंद्र पुलाडी तोला
1: ए नैसाबा मारे दुकान पो मोना नै प्रेसलाइनी चारबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै छतो होनी सगा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छाबा कोपिम ओछे
2: हजुर किने झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना सैदी म बिसा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट नलो धिताई पालिखी चोकै यावै चार मोहै
1: जग मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: तमुताय रबा ता क्रिबा जाला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय मिल तुई दिशा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउ है रूपाकोट।

का दे दुई नयन मेरी सपना पूरा बनोस करने छु प्रार्थना तिम्रो हाँसमा।

0: ऑयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप्स नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाउ र गुणस्तरीय काम, जिंदल पाइप हो यसको नाम।
1: रेडियो अन्नपूर्ण 93.4।

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक,
3: यति बेला रातिको 9 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचारी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: टोन पे बॉडी इसकी वाइब्रेटर।
1: आंधिया चले तो जैसे झाड़िया हिले, तेल में चले तो जैसे पूरिया हिले, तुनक तुनक तुन बजती कोई जो धुन थर थर अंतर आत्मा हिले।
0: आंधिया चले तो जैसे झाड़िया हिले, तेल में चले तो जैसे पूरिया हिले, तुनक तुनक तुन बजती कोई जो धुन थर थर अंतर आत्मा हिले।